भगवान श्री राम वनवास के पश्चात अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान करते हैं, जहां उनका राज्याभिषेक होना है। हनुमान जी तो वानर थे, वन में उनका वास था।